0: है द टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है.
1: நேர்களே, நமது ஆகாஷ்வாணி கோயம்புத்தூர் எஃப்எம் 103

0: ஆஸ்பத்திரியில பொண்ணம்மா உயிருக்காக போராடிட்டு இருக்கா. உங்களை பாக்குறேன்னு துணியா துணிக்கிறாக்கா.
1: பொண்ணம்மா
2: பொண்ணம்மா
3: காவேரி உன் சொந்த தங்க இல்லைன்னு உனக்கு தெரிஞ்சா எங்கே அவ மேல உனக்கு இருக்கிற பாசம் குறைஞ்சு போயிடுமோன்னு பயந்து அந்த ஊரை விட்டே வந்துட்டேன். அண்ணிலிருந்து உங்க ரெண்டு பேரையும் ரெண்டு கண்ணு போலவே வளர்த்துட்டு வரேன்ப்பா.
4: என்ன மன்னிச்சு கற்பகம் என்ன மன்னிச்சு
3: ஆனந்தா உங்க அப்பா தான் என்ன மன்னிக்கணும். அன்னைக்கு நான் ஆத்திரப்படாம இருந்திருந்தா இத்தனை வருஷமா நான் வாழ்வு இழந்திருப்பேனா? பெண்ணுக்குள்ள பொறுமையை இழந்தேன், அதோடையும் வாழ்வையும் இழந்துட்டேன்.
1: அம்மா
4: காவேரி ஏமா அங்கே நின்றுட்டேன் நம்ம அப்பா.
5: ये आकाशवाणी है. आज के संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन वादन. यू शिव प्रसाद जिनका जन्म आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक संगीतकार परिवार में हुआ था. कम उम्र में ही आपको संगीत की विरासत मिली. आपने अपने चाचा से कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की औपचारिक शिक्षा प्राप्त की. सम्माननीय सैक्सोफोनिस्ट स्वर शिल्पी यू वेंकट राव जी और चिंतालापुरी वराहला राजू गारू और पी दयाकर गारू के साथ संगतकर्ता के रूप में संगीत कार्यक्रमों में प्रदर्शन करना शुरू किया. आप पश्चिमी की फ्लूट में भी प्रशिक्षित हैं जो आपकी व्यापक संगीत बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है. आपको गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा नई दिल्ली द्वारा कला निधि पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया. ये आपके संगीत के प्रति अटूट समर्पण अनुशासन और जुनून को दर्शाता है जो आपको अन्य संगीतकारों के लिए एक आदर्श बनाता है. आपके साथ मृदंगम पर विघ्नेश जयरमन और वायलिन पर जी उमा संगत कर रही हैं. यू शिव प्रसाद अपने कार्यक्रम का आरंभ हंस ध्वनि से कर रहे हैं. रचना के बोल हैं वातापी. इसके रचनाकार हैं मुत्तुस्वामी दीक्षितर. ये रचना आदिताल में निबद्ध है.
6: दिस इज आकाशवाणी. Tonight, in Ravi Vasari Akhil Bharatiya Sangeet Sabha, we bring you a saxophone recital by U. Shiva Prasad. U. Shiva Prasad, born into a family of musicians in Vishakhapatnam, inherited his musical foundation at an early age. He received his formal training in Carnatic classical music from his uncle, the respected saxophonist Swar Shilpi U. Venkat Rao Garu, Chintalapudi Varhala Raju Garu, and P. Dayakar Garu, and he began performing in public concerts as an accompanist. He is also trained in Western key flute, showing broad musical versatility. Awarded Kalanidhi Award from Gandhi Hindustani Sahitya Sabha, New Delhi. It reflects his unwavering dedication, discipline and passion for music, making him a role model for musicians alike. Today, he is accompanied on Mridangam by V. Jayaraman, and on violin by G. Uma. U. Shiva Prasad begins his violin recital with Rag Hansdhwani. Composition Vatapi, composed by Muthuswami Dikshitar, is set to Aditya.

0: अभी आप सुन रहे थे यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन पर बजाया राग हंसध्वनि। कार्यक्रम को जारी रखते हुए यू शिव प्रसाद अब प्रस्तुत करेंगे राग नवरस कानड़ा। रचना के बोल हैं निन्नू वीणा रामा। इसके रचनाकार हैं त्याग राजा। ये रचना रूपकम ताल में निबद्ध है।
1: दैट वॉज राग हंसध्वनि। कंटिन्यूइंग हिज रिसाइटल, यू शिव प्रसाद नाउ प्रेजेंट्स अनदर कॉम्पोजिशन बेस्ड ऑन राग नवरस कानड़ा। Composition Ninnu Veena Rama, composed by Thyagaraja, is set to Rup.

0: अभी आप सुन रहे थे यूसुफ प्रसाद का सैक्सोफोन पर बजाया राग नवरस कानड़ा। अब आप सुनेंगे राग गौरी मनोहारी। रचना के बोल हैं जय जय पद्मनाभा। इसके रचनाकार हैं स्वाति तिरुनाल और ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: यू जस्ट हर्ड राग नवरस कानड़ा। यूसुफ प्रसाद कंक्लूड्स हिज सैक्सोफोन रिसाइटल विथ राग गौरी मनोहारी, कंपोजिशन जय जय पद्मनाभा, composed by Swati Tirunal, is set to Adi Talam.

0: अभी आप सुन रहे थे यूश प्रसाद का सैक्सोफोन वादन, आपके साथ मृदंगम पर विग्नेश जयरमन और वायलिन पर जी उमा संगत कर रही थी। इसी के साथ संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: He was accompanied on Mridangam by V. Jayaraman and on violin by G. Uma. With that, we come to the end of this program. This program was earlier recorded in the...
2: Namaskar, Akashwani Samachar.